0: तुम्हारा जो भी काम हो मुझसे कहा करो, मैं कर लूंगा।
1: अच्छा बेटे, अब तो जाके सो जा।
0: आज मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे पास सो जाऊं।
1: आओ आओ बेटे, मैं तुम्हें सुना दूं।

0: सुतिला गुआ मुदलिया सैम तीने कम है राठपुरा लोभपुरा सदैव जनता वित सिते शांतिये आरक्षा व सहा रक्षावर्णीय पिनिस विकासे करुण लबने सर्वरात्रि परित्राण धर्म देशनाव मेतन सिटे गिन एमटाई में सुदानम महाकारुणिक ऊ असरन सरन ऊ त्रैलो तिलक ऊ शांति नायक ऊ तिलो गुरु सम्मा संबुद्ध पियानन वहांसे पुरा पांसालिस वसक मुलुले बुदुन वहांसे गे श्री मुकयन देशनाकल वदाल सत्रवरन देवियान बेहिवीं प्रियकल महत्पल महाबल महानि संसदायक ऊ पिरिदेशनाव श्रवणीय क्रीमट दें अपि सुदानं विमु परिसमंततो तायति रक्कतीति परित्तं पिरित सैम आकार्यकिम्म आरक्षाव सलसन्नेय एदा तुम्बियं वेलागत् विशाला महानुवर यलि सुकित मुदित ऊये बुदुन वहांसे प्रमुख आर्य महासंगरत्ने विसिं सज्जायना कल रतन सूत्र देशनावे आनुभावयेनि एसे महत्पल गिन देन सूत्र देशनावंगें समंवित ऊ मे परित्राण धर्म देशनाव मेतन सिट आर्य मार्गेहि गमन करन्ना वू महासंगरत्ने देशना करुन लबन पिरित महत्पलाई महानिसंसदायकाई महाबलगतुई सदैव पिंगवतुनी पिंगवतियनी परित्राण धर्मदेशनाव आरंभ किरीमट पेर तिसरण्य सहित पंचशील समादंगी मसंदहा
1: अवसराय स्वामीन वहांसे
0: नमस्कार
1: नमो